कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से।